सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए तलाशी अभियान का हिस्सा। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। मरणों पर

0: the ownership of the party, and now tussle is on in the national capital over the MPs. And now what we see that it is mounting only pressure from the Mamata Banerjee, who is leading the party since past 28 years. Now it's a very setback for the Mamata Banerjee and her nephew Abhishek Banerjee, what we do understand. Back to you.
1: Right. Well, thank you so much, Hrithik, for getting us those details. From whispers of dissent to an open challenge when it comes to Mamata Banerjee's authority, a fresh rebellion is gathering steam inside the TMC. NDTV has tracked a series of meetings involving rebel MPs. This includes interactions with Bhupinder Yadav as well as Bengal's Chief Minister Suvindu Adhikari and the face of revolt Kakoli Ghosh, claiming around 20 MPs have sought separate seatings when it comes to the parliament and want to work in conjunction with the centre. Rebel MPs are now talking of a separate bloc, backing the NDA and even staking claim to be the real TMC. But the team, as far as Mamata Banerjee is concerned, is dismissing that entire exercise as a BJP-backed narrative, challenging the rebels to prove that they actually have the numbers required for a split. Let's get your reactions coming about with Kirti Azad there calling Mamata Banerjee a wounded lion and saying that wounded lion is very dangerous.
2: This MP ka naam diya hai. Aapko malum hoga kis prakar se Maharashtra mein split hua tha, Shiv Sena ka. To wahan to MPs ke naam aaye the na. कि ये लोग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, और ये लोग इतना ही उसमें है, तृणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना, जाए लड़ें बीजेपी से, इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे हैं लोग, पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले, तब तो सब कुछ ठीक था। इसमें बीजेपी का खेल है, ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है, पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है, कई लोगों के तो ऑफिस ऑफिस तोड़े गए हैं, वो तो हम लोगों ने देखा ही है।
3: व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन टीएमसी, वी हैव बिटरली एक्सपीरियंसेस इन महाराष्ट्र एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ समवन, हाउ वुड यू डेयर टू लीव द पार्टी एंड व्हाट आर यू गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट? यू आर इलेक्टेड फ्रॉम वन पार्टी व्हिच इज सपोज टू डिलीवर जस्टिस टू द कॉमन मैन और जस्ट डिलीवर सम गुड्स टू द कॉमन मैन, सर्विस टू द कॉमन मैन. And irrespective of, without you are forgetting that, now they want to strangulate TMC so that henceforth nobody can stand in front of
4: them. ये नोटों की करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक, मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को एहसास हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए, तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी।
5: देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, डूबते जहाज पर कौन बैठता? ये टीएमसी डूब चुका है, जनता खोज रही है कटमनी का पैसा, दो कोई साड़ी के नीचे घुस रहा है, कोई संदूक में घुस रहा है, कोई टमाटर से मार रहा है, किसी को पत्थर से रगेद रही है जनता, किसी पर अंडे फेंक रही है जनता, ये जनता खोज रही है जिसने शमशान से लेकर के घर तक सब जगह कटमनी लिया।
1: And the face of all of this is Kakoli Ghosh, who says, "I'm the chief whip and I have the numbers." She spoke with my colleague Vasudha Venugopal. Let's listen in.
6: The TMC is facing rebellion of sorts and MPs are asking for answers. Dr. Kakoli Ghosh Dasidar is here with me. Dr. Dasidar, what is happening inside the TMC and why are the MPs now rebelling?
7: The MPs have been elected by the common men. But I, through the past election, have been observing the mentality of the voters who have voted against the ruling dispensation. And they have been washed out. I am of that party. So I realized that whatever feeling I had towards the unemployment, towards the cut money culture, towards the health sector you

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: happening right now in TMC, we have bitterly experienced in Maharashtra. And without the support of someone, how would you dare to leave the party? And what are you going to gain out of it? You are elected from one party, which is supposed to deliver justice to the common man, or just deliver some goods to the common man, service to the common man. And irrespective of, you are forgetting that, now they want to strangulate TMC, so that henceforth nobody can stand in front of
1: them. ये नोटंकी करने का वजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक, मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को ऐसा हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए। तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी।
2: मोदी और शाह के जो बीजेपी, वो क्या करते हैं कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। जो लोकतंत्र जहां है वहां जाके वो तानाशाही दिखाता है। हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना को दो किया हुआ है। हमने देखा एनसीपी का विभाजन हो गया है, तो वही हो रहा है टीएमसी का भी, यही कर रहे हैं कि उनको एमपीस चाहिए, फिर उनको बिल्स पास करना है, विधेयक पास करना है पार्लियामेंट में, जो राज्यसभा है या लोकसभा, तो इसके लिए ये सब खेल खेल रहा है। और मैं आज बोल रही हूँ कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, उनको एक डिक्टेटरशिप चाहिए इंडिया में, और हम लोग विरोध करेंगे।
3: देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, डूबते जहाज पर कौन बैठता? ये टीएमसी डूब चुका है, जनता खोज रही है कटमनी का, पैसा दो। कोई साड़ी के नीचे घुस रहा है, कोई संदूक में घुस रहा है, कोई टमाटर से मार रहा है, किसी को पत्थर से रगेद रही है जनता, किसी पर अंडे फेंक रही है जनता। ये जनता खोज रही है जिसने शमशान से लेकर के घर तक सब जगह कटमनी लिया।
4: सवाल तो ये पैदा होता है कि असली टीएमसी अगर संख्या बल से देखा जाए तो विधायक भी नहीं है ममता बनर्जी के पास, एमपी भी नहीं है ममता बनर्जी के पास, तो फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या नकली टीएमसी का प्रतिनिधित्व करके इंडिया अलायंस में बैठे थे? और बात तो यही है ना कि पुत्र मुंह में पार्टी गई। पहले पुत्र मुंह में जो हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी बर्बाद हुई, डीएमके बर्बाद हुई, पुत्री मुंह में एनसीपी बर्बाद हुई, और आज टीएमसी भी भतीजे मुंह में बर्बाद हो रही है। ममता बनर्जी अनफॉर्चुनेटली भतीजे को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं, तो विधायक भी और सांसद भी उनके साथ नहीं रहना चाहते। मतलब पहले जनता ने रिजेक्ट किया, फिर जनप्रतिनिधि ने।
5: वेल, द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टीएमसी रिबेलियन एक्सटेंड्स वेल बियॉन्ड वेस्ट बंगाल, बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू ऑल्टर द अरिथमेटिक एज फार एज पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड। You see, as things stand at the moment, the NDA already enjoys a comfortable majority in the Lok Sabha with 292 MPs, comfortably above the halfway mark of 272. However, if the rebel camp's claim of support from around 20 TMC MPs materializes, the NDA's effective strength could rise to 312. That doesn't change who governs our country, but it also substantially increases the government's legislative cushion as far as the Lok Sabha is concerned, and reduce its dependence on allies during politically sensitive moments especially. And the more interesting story, you must note, may lie in perception. A large-scale breakaway away from one of the country's biggest opposition parties would represent a significant political setback for Mamata Banerjee and could reshape the balance of power within the opposition ecosystem. In the Rajya Sabha, though, the picture is a little more complex. The NDA remains short of the two-thirds mark, and even if unrest spreads into the TMC's 13-member upper house contingent, constitutional amendments would still require broader political support. Aishwarya Jain is tracking the latest for us as far as the state of play and the claim of numbers is concerned. He joins us with all the clarity we need this morning. Aishwarya, the rebel camp claims 20 MPs. The Mamata camp says that figure is closer to 12. At the moment, break down for us, strip away the rhetoric. Who is counting whom, and where does the truth likely lie?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है।
1: दिस वॉज फॉलोड बाय मेजर इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग GST, डिजिटल इंडिया, UPI based payments and the rapid expansion of digital public
2: infrastructure. भारत का संकल्प है, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है।
1: The transformation changed everyday life. From tea sellers and vegetable vendors to small shopkeepers, millions became participants in India's digital economy. One of the government's flagship reforms was direct benefit transfer.
2: UPI ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानीपुरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है।
1: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, टेन्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रुपीज वर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज, reducing leakages and bypassing intermediaries. Schemes ranging from PM Kisan to Ujwala were designed around direct delivery of benefits. Five years later came the 2019 general election. The BJP not only retained power but increased its tally to 303 seats. The mandate was larger than before. For supporters, it was evidence that confidence in Modi's leadership had strengthened.
3: प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, आप सबका पूरा देशवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं।
1: The second term witnessed several landmark decisions. On August 5, 2019, the government revoked Article 370, ending Jammu and Kashmir's special constitutional status. Supporters described it as a step toward national integration. Critics questioned both the process and implications.
2: Article 370 iski pooja karne ke wale logo ne vote bank ki rajneeti ka hathiyar banane walon ne 370 ko usne Jammu Kashmir ka जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है।
4: इतने सालों तक एपीसमेंट की पॉलिटिक्स से और एपीसमेंट की पॉलिसी से कश्मीर को संभालने का प्रयास किया गया। मोदी जी ने धारा 370-35 को समाप्त किया और घाटी में एक स्पष्ट संदेश भेजा कि आप भारत का हिस्सा हो, आपका आपके ऊपर पूरे भारत का अधिकार है और पूरे भारत पर घाटी के लोगों का भी अधिकार है।
1: द गवर्नमेंट ऑल्सो इनएक्टेड लेजिस्लेशन अगेंस्ट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, प्रेजेंटिंग इट एज अ रिफॉर्म एम्ड एट प्रोटेक्टिंग मुस्लिम विमेन। Then came the biggest challenge of the decade.
5: की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया, इसका फायदा ना सिर्फ मुस्लिम बहनों को मिला, बल्कि उनके परिवार को मिला।
1: COVID-19. The pandemic tested governments across the world, and India was no exception. The Modi government responded with lockdowns, welfare measures, free food distribution, cash assistance, and one of the world's largest vaccination drives. Digital platforms such as Cowin became central to vaccine management. Simultaneously, the government launched the Atmanirbhar Bharat initiative to strengthen domestic manufacturing and economic resilience. Another defining moment of Modi's second term came on August 5, 2020. In Ayodhya, Prime Minister Modi laid the foundation stone for the Ram Temple. For millions, it represented the culmination of a decades-long movement. For the BJP, it became one of the most symbolic political moments of the era. The years that follow were not without setbacks. The BJP faced reverses in states such as Maharashtra and Jharkhand. While changing political equations in Bihar created fresh challenges. The NDA's footprint appeared to shrink. But the party used the setbacks as an opportunity to regroup. In the 2023 assembly elections, the BJP scored major victories in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. The win signaled that the party remained electorally competitive and politically resilient. Then came the 2024 general election. The BJP returned to power and Narendra Modi secured a third consecutive term as Prime Minister. This time, however, the BJP fell short of a majority on its own and formed the government with NDA allies. Yet while the parliamentary arithmetic changed, the NDA's geographical footprint remained extensive across a large number of states. Supporters argued that the broader political influence of the BJP continued to expand. Over the past decade, the BJP has also strengthened its presence in regions where it once had limited influence. The party's growth in states such as West Bengal is frequently cited as evidence of organizational expansion and sustained political campaigning. Foreign policy and national security also became defining themes of the Modi years. After the 2016 Uri attack, India carried out surgical strikes across the line of control. Following the 2019 Pulwama attack, India conducted airstrikes on Balakot. The government argued these actions reflected a more assertive security doctrine. Supporters described it as a shift from strategic restraint to proactive response.
2: नौ तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया, मैंने कहा कि आपका फोन था, तीन चार बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था।
6: श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
1: 12 years after 2014, India has undergone significant political, economic and technological change. The roads are different. The digital ecosystem is different. India's global profile is different. Challenges remain, debates continue and political battles persist. But one thing is clear. The story that began in 2014 is still being written. Bureau Report, NDTV.
2: भारत माता की।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आग प्योर मसाला।
5: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
6: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
7: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
8: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
9: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
10: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
11: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
12: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
13: Across the country,
14: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
15: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
16: The situation in the Strait of Hormuz right yes. now and Iran, the last 48 hours have been tense. Is there a sense that strikes are imminent?
17: Iran can never have a nuclear weapon. And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The straits cannot continue to be closed.
16: The import of American oil is important for India, particularly because of the situation.
17: India wants to diversify its energy. We want to diversify the countries we export to.
16: There is also an issue of visas for Indians. They have to come back to India for green cards now. Why has America taken this decision?
17: Well, it's not about India, it's about the whole world. Anytime you reform a system, there's going to be some disruptions, there's going to be some hiccups.
16: How did the meeting with the Prime Minister go? What did you discuss?
17: Relationship between the President, President Trump, and Prime Minister Modi. I think that always makes it easier to have these meetings because of the personal affinity they have to one another.
16: Thank you very much for
17: Thank you.
16: Thank you.
17: Thank you very much.

0: Brings team inside the Trinamool Congress, Mamta's camp. Kalyan Banerjee has slammed rebel MPs for going against Mamta Banerjee and said that they don't have numbers to merge with other party. Rebel MPs expected to meet at the residence of Kakli Ghosh shortly before getting a confirmation or meeting time from the Speaker's office. As per sources, rebel MPs are unhappy because they had no stake in decision-making within the Trinamool Congress Party. They claim they were never consulted before any decision was made. And as per sources, as of now, rebel MPs have no appointment with the Speaker. In fact, they may not even meet him today. Meanwhile, Yusuf Pathan is expected to reach Delhi amid speculation that he may be joining the rebel faction of the Trinamool Congress Party.
1: When they went to Bhupendranath Jadhav's residence, and when Chief Minister Shubhendu Odhikari came, they assembled, they discussed. That means they went to BJP. They may make some jugglery of words, but pupils are not fooled. I could have understood they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi.
2: Sir, TMC Kalyan Banerjee bhi press conference hold kar rahe hain and he has stated that jo rebel MLAs hain wo traitors hain, wo gaddar hain aur keval seat ke liye, satta ke liye, power ke liye wo BJP ke paas gaye hain, aisa unka kehna hai aur shuruaat se Mamata Banerjee ke saath rahe hain aur ab ye corruption unhe kahan se dikh rahe hain, itne saal nahi dikha, ye keval satta ka lobh hai, aur traitor keh rahe hain aap.
3: Main MLA logon ka pravakta nahi hu, main zindagi mein kabhi MLA nahi tha. इसका जवाब जो सवाल पूछ रहे हैं वो दूसरी भूल ठिकाना में आप आ गए, आपको सही ठिकाने पे जाने पड़ेगा ये सवाल का जवाब लेने के लिए.
2: सर, आपने कल लेटर में कई सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए थे. सर, करप्शन का था, आपने कहा था महिलाएं भी इनसिक्योर हैं उस रिजीम में और आपकी बात भी नहीं सुनी जाती थी, ऐसा आपने क्यों कहा?
3: बात नहीं, किसी का बात भी नहीं सुना गया. पार्कशीट कामधुनी शुरू करके आरजी कर तक सैकड़ों महिला का वो तचड़ हुआ, खून हुआ, कत्ल किया गया और मेरे सारे जो गुंडे लोग थे वो हमारे पार्टी का शेल्टर में थे, कोई हमारा पार्टी लोग का कार्यकर्ता भी थे.
4: सत्ता पे रहे सब ठीक ठाक थे, सत्ता से बाहर आने से ही सारे विवाद खड़ा हो गए और ये अभी नेत्री ममता बनर्जी उनकी भतीजे उनका भी हालात देखे, दौड़ते दौड़ते दिल्ली आ पहुँचे, ये तो अस्थिर स्थिति है.
5: क्या इस TMC के इस झगड़े से, इस फूट से कांग्रेस के लिए एक मौका आप देख रहे हैं क्या? आपको एक अपॉर्चुनिटी?
4: मैं कहूँ मौका की तलाश में नहीं है, लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी की जितने जमीन, ये जमीन हम खोए थे और TMC पार्टी सारे जमीन कब्जा कर लिए थे. तो TMC पार्टी की जमीन जब ढीली होते जाएंगे तो हमारे लिए और सारे नया मतलब मौका आने की उम्मीद है.
6: जो महाराष्ट्र में हुआ वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, जो उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना. और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना ये उनकी हॉबी है.
7: राजनीति ही बदल गई, वो आइडियोलॉजी पे कोई काम नहीं कर रहा है. ये जो बोने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है. पार्टियों को तोड़ो, पार्टियों को डिवीजन करके सत्ता में बने रहने के लिए सभी मर्यादा का वो उल्लंघन करते हैं, मर्यादा पार करते हैं. आज वो TMC के सांसदों को लेकर पूरे मीडिया में मेन इश्यू साइड में गए और भारतीय जनता पार्टी ने इन सांसदों को अलग गुट को मान्यता देकर सरकार को भक्कम किया. चाहे कुछ भी हो पर सरकार बनी रहे, यही इसके पीछे की मंशा है.
8: देखिए, इसके लिए TMC और उनका नेतृत्व स्वयं दोषी है और अब TMC का भविष्य तो रहा नहीं. 2026 के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया है और जिन्होंने पश्चिम बंगाल

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
2: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी पट्टी पर है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
5: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
6: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
7: The people of Kerala understood the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
8: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: sent an open challenge to Mamata Banerjee's authority. A fresh rebellion is gathering steam inside the party. Mamata Banerjee's camp's Kalyan Banerjee has slammed rebel MPs for going against her and said that they don't have numbers to merge with the other party. Rebel MPs expected to meet at the residence of Kakali Ghosh any time now, but before getting a confirmation or meeting time from the Speaker's office, they will be holding that meeting. The ball is in the Speaker's court as well to take further decisions. As per sources, rebel MPs have been unhappy because they had no stake in decision-making. They were never consulted before any decision-making, as per sources. As of now, rebel MPs have no appointment with the Speaker, is what we know. In fact, they may not meet him today. Meanwhile, Yusuf Pathan is expected to reach Delhi amid speculation that he may also join the rebel group in a few days from now.
1: When they went to Bhupendranath Jadhav's residence, and when Chief Minister Shubhendu Adhikari came, they assembled, they discussed. That means they went to BJP. They may make some jugglery of words, but pupils are not fooled. I could have understood they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi.
2: मैंने पिछले कई दिनों से, पहले एक हफ्ता से, मैंने जो कुछ भी बोलना था मेरे तरफ से, मैंने वो मैसेज हमारे पार्टी वर्कर्स को भी दिया, जनता को भी दिया, मैं इस्तीफा दे दिया।
3: सर, करप्शन था आपने कहा, महिलाओं पर अत्याचार भी होता था, क्या कुछ चीजें ऐसी हो रही थी टीएमसी में जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि अब आपको इस्तीफा सौंप देना चाहिए, अब यह जगह आपकी वर्क प्रिंसिपल के हिसाब से ठीक नहीं है?
2: यही वक्त था। हर पॉलिटिशियन, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में मैंने पहले दफे कोई पार्टी से इस्तीफा दे दिया या राज्यसभा से इस्तीफा दिया, हिंदुस्तान में तो पहली घटना नहीं है। आप लोग सब सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने दफे ये पार्टी से इस्तीफा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से इस्तीफा, मंत्री पद से इस्तीफा कितने हजारों लोग ने दिया।
3: कई सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और मिनिस्टर्स मीटिंग में बातें सुनते नहीं थे, पॉलिसी मेकिंग में केवल दो या चार लोगों की बातें सुनी जाती थी, वरिष्ठ नेताओं की बात भी अनसुनी कर दी जाती।
2: बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने बोला है आपको, बिल्कुल सही बात बोला है। मेरे मन में भी यही, ये भी एक कारण है कि हम लोग है पार्टी में, कॉमिटी में, लेकिन हम लोग फालतू आदमी हैं, हमारा बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं।
4: सत्ता पे रहे सब ठीक ठाक थी, सत्ता से बाहर आने से ही सारे विवाद खड़ा हो गए, और ये अभी नेत्री ममता बनर्जी, उनकी भतीजे, उनका भी हालात देखियो, दौड़ते दौड़ते दिल्ली आ पहुँचे, ये तो अस्थिर स्थिति है।
5: क्या इस टीएमसी के इस झगड़े से, इस फूट से कांग्रेस के लिए एक मौका आप देख रहे हैं, क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी?
4: मैं कहा मौका की तलाश में नहीं है, लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी की जितने जमीन, ये जमीन हम खोए थे और टीएमसी पार्टी सारे जमीन कब्जा कर लिए थे, तो टीएमसी पार्टी की जमीन जब ढीली होते जाएंगे तो हमारे लिए और सारे नया मतलब मौका आने की उम्मीद है।
6: तो महाराष्ट्र में हुआ, कोई तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, जो उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना, और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना, ये उनकी हॉबी है।
7: देखिए, इसके लिए टीएमसी और उनका नेतृत्व स्वयं दोषी है, और अब टीएमसी का भविष्य तो रहा नहीं, 2026 के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया है, और जिन्होंने पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी ख़त्म की, तो उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, तो डिक्टेटरशिप में पूरी पार्टी चलाई है, और ये सारा

0: Bharat, RRTS and the Ganga Expressway. Now, as the government marked the milestone, NDA allies praised Modi's leadership, while the Congress has attacked the government's record, calling it a story of broken promises and missed opportunities. NDTV spoke exclusively to Union Minister Kiran Rijiju.
1: आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दोनों के कार्यकाल में आप प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री हो गए. दोनों के कार्यकाल में बेसिक अंतर, मूलभूत अंतर क्या देखते हैं?
2: बहुत अंतर है. जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय 5 ईयर प्लानिंग करके देश के लिए काम करना शुरू किया. जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से लेकर के आगे जितने भी कांग्रेस और बाकी जितने भी सरकारें आए हैं, गैर सरकारी कांग्रेस भी आए हैं, उसमें 5 ईयर प्लानिंग को तवज्जो दिया गया था. और फिर देश अपना आप गति जो है जैसे भी हो चलते रहा. लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था. जब आप कहीं भी जाता है जर्नी में भी तो लक्ष्य तो होना पड़ेगा, डेस्टिनेशन होना पड़ेगा. तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद,
1: लेकिन योजना आयोग बना तो योजना आयोग तो लक्ष्य ही बनाता था ना?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. वो 5 साल का होता है. 5 ईयर प्लानिंग ही हमारा सिस्टम था. तो मोदी जी ने उसको बदलते हुए 2047 में विकसित भारत बनना है उन्होंने टारगेट लक्ष्य रखा. तो आप सोचिए कि इतने सालों तक भारत गरीब क्यों बना रहा. हमारे साथ में काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबने आज़ादी प्राप्त किया और सब आगे बढ़ा. कई राष्ट्र बिल्कुल वो अपने ओर से संपन्न कह सकते हैं या विकसित बन सक बोल सकते विकसित राष्ट्र बने. तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी ओवरऑल जीडीपी जो है विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया क्योंकि लक्ष्य नहीं था.
1: आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती थी, 5 साल की योजना बना ली जाती थी, उसके बाद अगला देखेंगे. ये चिंता नहीं थी कि 20 साल बाद देश कहाँ होना चाहिए.
2: लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए. मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा. हर काम मोदी जी का, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया खेलो इंडिया हो, हर चीज़ जितना भी सरकारी कार्यक्रम जो जन अभियान चलाया वो विकसित भारत बनाने के लिए ही चलाया गया है. तो हमारा लक्ष्य है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा आज़ादी का तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा. तो अगर टारगेट उस समय रखते हैं नेहरू जी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में, तो जब टारगेट रखता था आदमी उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं. तो विज़न, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक्चुअल जो विज़न है, सपना है, वो न्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है. मैं उनके साथ शुरू से काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है कितना लगन और कितना अच्छा सोच के साथ मोदी जी ये लक्ष्य रखा है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं.
0: The center's decision to slash subsidize LPG refills for Ujjwala beneficiaries from 9 to 4 a year has sparked a political storm. The Congress has termed the move a betrayal of the poor, alleging that rising costs will push vulnerable families back to traditional cooking fuels. The Samajwadi Party too has hit out, questioning how 4 cylinders can meet a household's annual needs. The government has defended the revision, saying the quota has been aligned with actual consumption patterns, while the subsidy framework and direct benefit transfer mechanism remain unchanged. The centre also points to over 52,000 crore rupees in LPG support since the year 2022, citing rising global prices and higher import costs behind the decision.
3: This is another way of cheating the people, and those big announcements by the Prime Minister that without smoke and without any kind of burning of wood and other ordinary people will get gas cylinders is becoming a now false narrative, and poor people are forced to use all kind of other means, because this is the only in from the government's policies are getting changed because they don't see that which is giving political dividends to them.
4: I mean, this is another way of betraying the people's faith who all voted for them to come into the power.
5: One side, when he allows, Honorable Prime Minister allows his friend to import petroleum products from the Russia and sell it off to other country, make money. When the prices at petroleum and gas prices are at the lowest, it did not pass the benefit to the common people. Now the much pampered propaganda he did for the Ujjwala scheme, free from smoke and all the problems, and he is cutting down that. And saying that this four is average enough is something he is living in the ivory tower. And his friends are living, I mean, his advisors are living in the ivory tower. They don't know the reality.
0: From the heart of the Himalayas comes a historic infrastructure milestone. The breakthrough of the strategic Zojila Tunnel has been achieved, marking a major step in one of India's most ambitious road projects. Union Minister Nitin Gadkari triggered the final blast, formally completing the crucial excavation phase in the presence of LG Manoj Sinha and Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah. Once operational, the all-weather tunnel will provide seamless connectivity between Kashmir and Ladakh, overcoming the harsh challenges of that pass. Touted as a game-changing engineering feat, the breakthrough brings India closer to its longest road tunnel and a new era of strategic economic connectivity in the region.
6: Well, it is a historic moment in India's road infrastructure. Zojila Tunnel is achieving its final breakthrough. Just two left, which is being now achieved. And it's not just any other road tunnel. It's India's most strategic tunnel, which is connecting the region with the rest of the country. For last 70 or 80 years, this region remains cut off from the rest of the country during the winter. And because of the seasonal closure, even India's defense requirements were being compromised. They were being impacted. But finally, all these workers and the management, they have managed this massive project, India's longest road tunnel. This is really a celebration moment for all of them.
7: Tunnel ka yahan ke logon pe ki zindagiyon pe kitna asar padega, ye jab aap yahan ke logon se sunenge is baat ka ehsaas hoga. Chahe yahan ke students ko aur zyada aasani se taleem hasil karna, यहाँ के मरीजों को और ज़्यादा आसानी से अस्पताल पहुँचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन पे हमें एहसास करना मुश्किल होगा.
8: आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि यह टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है. और अभी मुझे बताया गया कि यह 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी यह नंबर एक पर जाएगा, ये जानकारी मुझे दी गई. मुझे बहुत खुशी है. ये लद्दाख ले और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है.
6: वेल, इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल जोजिला टनल हैज बीन कंप्लीटेड. फाइनल ब्रेक थ्रू हैज बीन इज बीइंग अचीव्ड टुडे. एंड यू नो हु हैज बीन द की इंजीनियर ऑफ दिस टनल? एन ईरानियन इंजीनियर, यूसुफ. थैंक यू सो मच मिस्टर यूसुफ टॉकिंग टू NDTV.
9: थैंक यू.
6: एंड for last more than 4.5 years you have been working on this tunnel, coming all the way from Iran and actually making this tunnel possible because of your expertise.
9: Thank you very much. I'm also thankful to you and all media and all the team who are involved in making such an iconic project to come through.
0: On that note, sipping a short break, news and updates on the other side. Stay tuned to Breaking Ground at 1.

0: fact, Medinipur Trinamool MP June Amalaya and Kharagpur Rural Trinamool MLA Dinen Roy met Bengal Chief Minister during his administrative meeting. Also, rural MPs are expected to meet at the residence of Kakoli Ghosh before getting a confirmation or meeting time from the Speaker's office. As per sources, as of now, rural MPs have no appointment with the Speaker. In fact, they may not meet him today. Meanwhile, Yusuf Pathan is expected to reach Delhi amid speculation that he may also join the rural bandwagon.
1: When they went to Bhupendranath Jadhav's residence, and when Chief Minister Shubhendu Odhikari came, they assembled, they discussed. That means they went to BJP. They may make some jugglery of words, but pupils are not fooled. I could have understood they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention. But they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi.
2: मैंने पिछले कई दिनों से पहले एक हफ्ता से मैंने जो कुछ भी बोलना था मेरे तरफ से मैंने वो मैसेज हमारे पार्टी वर्कर्स को भी दिया जनता को भी दिया वहाँ कहानी खत्म हो गया कल जब मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया
3: सर करप्शन था आपने कहा महिलाओं पर अत्याचार भी होता था क्या कुछ चीजें ऐसी हो रही थी टीएमसी में जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि अब आपको इस्तीफा सौंप देना चाहिए अब यह जगह आपके वर्क प्रिंसिपल के हिसाब से ठीक नहीं है
2: यही वक्त था हर पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में मैंने पहले दफे कोई पार्टी से इस्तीफा दे दिया या राज्यसभा से इस्तीफा दिया हिंदुस्तान में तो पहली घटना नहीं है आप लोग सब सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने दफे ये पार्टी से इस्तीफा लोकसभा राज्यसभा विधानसभा से इस्तीफा मंत्री पद से इस्तीफा कितने हजारों लोग ने दिया
3: कई सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और मिनिस्टर्स मीटिंग में बातें सुनते नहीं थे पॉलिसी मेकिंग में केवल दो या चार लोगों की बातें सुनी जाती थी वरिष्ठ नेताओं की बात भी अनसुनी कर दी जाती
2: बिल्कुल सही बात है जिन्होंने बोला है आपको बिल्कुल सही बात बोला है मेरे मन में भी यही ये भी एक कारण है कि हम लोग है पार्टी में कमेटी में लेकिन हम लोग फालतू आदमी हैं हमारा बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं
4: सत्ता पे रहे सब ठीक ठाक थी सत्ता से बाहर आने से ही सारे विवाद खड़ा हो गए और ये अभी नेत्री ममता बनर्जी उनकी भतीजे उनका भी हालात देखियो दौड़ते दौड़ते दिल्ली आ पहुँचे ये तो अस्थिर स्थिति है
5: क्या इस टीएमसी के इस झगड़े से इस फूट से कांग्रेस के लिए एक मौका आप देख रहे हैं क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी
4: मैं कहूँ मौका की तलाश में नहीं है लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी की जितने जमीन वो ये जमीन हम खोए थे और टीएमसी पार्टी सारे जमीन कब्जा कर लिए थे तो टीएमसी पार्टी की जमीन जब ढीली होते जाएंगे तो हमारे लिए और सारे नया मतलब मौका आने की उम्मीद है
6: जो महाराष्ट्र में हुआ वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर ये दिखाना ये उनकी हॉबी है
7: देखिए इसके लिए टीएमसी और उनका नेतृत्व स्वयं दोषी है और अब टीएमसी का भविष्य तो रहा नहीं 2026 के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया है और जिन्होंने पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी ख़त्म की तो उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं तो डिक्टेटरशिप में पूरी पार्टी चलाई है और ये सारा इशू शुरुआत हुआ है जैसे ही चुनाव हारे उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी का रवैये में कोई परिवर्तन नहीं था सारे विधायकों के जो है जाली दस्तखत करके स्पीकर तक भेज दिया गया लीडर ऑफ ओपोजिशन चुनने के लिए फर्जी दस्तावेज के माध्यम से
0: Moving on from his first

0: take any of them in, saying that they do not have enough numbers to merge with another party.
1: When they went to Bhupendranath Jadhav's residence, and when Chief Minister Shubhendu Odhikari came, they assembled, they discussed. That means they went to BJP. They may make some jugglery of words, but pupils are not fooled. I could have understood they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi.
2: मैंने पिछले कई दिनों से पहले एक हफ्ता से मैंने जो कुछ भी बोलना था मेरे तरफ से मैंने वो मैसेज हमारे पार्टी वर्कर्स को भी दिया जनता को भी दिया वहाँ कहानी खत्म हो गया कल जब मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया
3: सर करप्शन था आपने कहा महिलाओं पर अत्याचार भी होता था क्या कुछ चीजें ऐसी हो रही थी टीएमसी में जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि अब आपको इस्तीफा सौंप देना चाहिए अब यह जगह आपके वर्क प्रिंसिपल के हिसाब से ठीक नहीं है
2: यही वक्त था हर पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में मैंने पहले दफे कोई पार्टी से इस्तीफा दे दिया या राज्यसभा से इस्तीफा दिया हिंदुस्तान में तो पहली घटना नहीं है आप लोग सब सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने दफे ये पार्टी से इस्तीफा लोकसभा राज्यसभा विधानसभा से इस्तीफा मंत्री पद से इस्तीफा कितने हजारों लोग ने दिया
3: कई सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और मिनिस्टर्स मीटिंग में बातें सुनते नहीं थे पॉलिसी मेकिंग में केवल दो या चार लोगों की बातें सुनी जाती थी वरिष्ठ नेताओं की बात भी अनसुनी कर दी जाती
2: बिल्कुल सही बात है जिन्होंने बोला है आपको बिल्कुल सही बात बोला है मेरे मन में भी यही ये भी एक कारण है कि हम लोग है पार्टी में कॉमिटी में लेकिन हम लोग फालतू आदमी हैं हमारा बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं
4: सत्ता पे रहे सब ठीक ठाक थी सत्ता से बाहर आने से ही सारे विवाद खड़ा हो गए और ये अभी नेत्री ममता बनर्जी उनकी भतीजे उनका भी हालात देखियो दौड़ते दौड़ते दिल्ली आ पहुँचे ये तो अस्थिर स्थिति है
5: क्या इस टीएमसी के इस झगड़े से इस फूट से कांग्रेस के लिए एक मौका आप देख रहे हैं क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी
4: मैं कहा मौका की तलाश में नहीं है लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी की जितने जमीन ये जमीन हम खोए थे और टीएमसी पार्टी सारे जमीन कब्जा कर लिए थे तो टीएमसी पार्टी की जमीन जब ढीली होते जाएंगे तो हमारे लिए और सारे नया नया मतलब मौका आने की उम्मीद है
6: जो महाराष्ट्र में हुआ कोई तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर ये दिखाना ये उनकी हॉबी है
7: देखिए इसके लिए टीएमसी और उनका नेतृत्व स्वयं दोषी है और अब टीएमसी का भविष्य तो रहा नहीं 2026 के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया है और जिन्होंने पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी ख़त्म की तो उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं तो डिक्टेटरशिप में पूरी पार्टी चलाई है और ये सारा इशू शुरुआत हुआ है जैसे चुनाव हारे उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी का रवैये में कोई परिवर्तन नहीं था सारे विधायकों के जो है जाली दस्तखत करके स्पीकर तक भेज दिया गया लीडर ऑफ ओपोजिशन चुनने के लिए फर्जी दस्तावेज के माध्यम से
0: So let's now take a look at what is being said by these so-called rebel MPs, why they are unhappy. They have said they felt completely sidelined. This is in interviews to the media, to NDTV, saying that there's no stake in decision-making. That is also one of the reasons that they felt unhappy. Other MPs are also claiming that the ministers did not give any time. That MPs' requests were repeatedly ignored by the party leadership. And that only a few had decision access. So essentially saying that they felt sidelined, and that is one of the reasons saying

0: From his first swearing-in in 2014 to a third straight term in 2024, Prime Minister Narendra Modi has completed 12 years in office, becoming one of India's longest-serving leaders. The numbers are significant: 12 years as Prime Minister, 3 consecutive terms, over 18 years in elected executive office, and more than 4,400 days at the helm of the country. The period has seen some landmark projects, including the new Parliament building, Kartavya Path, Vande Bharat trains, INS Vikrant, the Kashmir Rail Link, Noida International Airport, as well as Namo Bharat, RRTS, and the Ganga Expressway. Now, as the government is marking the milestone, NDA allies praise the Prime Minister's leadership, while the Congress attacked the government's record, calling it a story of broken promises and missed opportunities. 90TV spoke exclusively to Union Minister Kiran Rijiju. Listen in.
1: आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दोनों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री हो गए। दोनों के कार्यकाल में बेसिक अंतर, मूलभूत अंतर क्या देखते हैं?
2: बहुत अंतर है। जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई, उस समय 5 ईयर प्लानिंग करके देश के लिए काम करना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से लेकर के आगे जितने भी कांग्रेस और बाकी जितने भी सरकारें आए हैं, गैर सरकारी कांग्रेस भी आए हैं, उसमें 5 ईयर प्लानिंग को तवज्जो दिया गया था। और फिर देश अपना आप गति जो है जैसे भी हो चलते रहा। लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। जब आप कहीं भी जाता है जर्नी में भी, तो लक्ष्य तो होना पड़ेगा, डेस्टिनेशन होना पड़ेगा। तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद,
1: लेकिन योजना आयोग बना, तो योजना आयोग तो लक्ष्य ही बनाता था ना?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो 5 साल का होता है। 5 ईयर प्लानिंग ही हमारा सिस्टम था। तो मोदी जी ने उसको बदलते हुए 2047 में विकसित भारत बनना है, उन्होंने टारगेट लक्ष्य रखा। तो आप सोचिए कि इतने सालों तक भारत गरीब क्यों बना रहा? हमारे साथ में काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सबने आज़ादी प्राप्त किया और सब आगे बढ़ा। कई राष्ट्र बिल्कुल वो अपने ओर से संपन्न कह सकते हैं या विकसित बन सक बोल सकते हैं, विकसित राष्ट्र बने। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी ओवरऑल जीडीपी जो है विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया, क्योंकि लक्ष्य नहीं था।
1: आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती थी, 5 साल की योजना बना ली जाती थी, उसके बाद अगला देखेंगे, ये चिंता नहीं थी कि 20 साल बाद देश कहाँ होना चाहिए।
2: लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा। हर काम मोदी जी का, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया खेलो इंडिया हो, हर चीज़ जितना भी सरकारी कार्यक्रम जो जन अभियान चलाया, वो विकसित भारत बनाने के लिए ही चलाया गया है। तो हमारा लक्ष्य है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा आज़ादी का, तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो अगर टारगेट उस समय रखते नेहरू जी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में, तो जब टारगेट रखता था आदमी उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तो विज़न, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक्चुअल जो विज़न है, सपना है, वो न्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मैं उनके साथ शुरू से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कितना लगन और कितना अच्छा सोच के साथ मोदी जी ये लक्ष्य रखा है, और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

0: बंगला किसका है? उड़ीसा का या बंगाल का?
1: उड़ीसा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
2: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
4: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
3: फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल एक्सेस, फ्रॉम रिफॉर्म टू रियल इंपैक्ट। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल डिफाइन द नेक्स्ट इंडिया। NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
5: What's the job?
6: Hello, peace people.
7: Kolkata traffic.
8: The highest number of voters.
9: Tamil Nadu votes decisive.
10: Naprata Africa mahal hai. Udhampur batrao kya gaya ha.
6: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
11: TVK headquarters here.
12: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
13: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
14: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
6: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
15: Happy meeting NDTV team here.
16: Thanks for NDTV.

0: कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि त्रुटि शून्य नीट इस बार करके देंगे। और फिर और एक बार मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, इस बार परीक्षा की रिजल्ट सटीक समय में ले आएंगे, जिससे बच्चों की लर्निंग टाइम लॉस ज़्यादा ना हो। बच्चों को फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पढ़ाई में ध्यान दें, निर्भुल तरीके से री नीट की एग्जामिनेशन हम कर लेंगे, आप उसमें सहयोग करें।
1: All right, so Dharmendra Pradhan, they're reassuring students and asking for their cooperation, saying the NEET re-exam will be flawless. Well, let's go across to Ashwini Singh for more on this story. And Ashwini, this comes even as, you know, there have been demands by the opposition that Dharmendra Pradhan resign. And there were also protests and demands by student bodies as

0: पाकिस्तान में इन्होंने हमला किया तो ही वॉज इन चार्ज ऑफ द मुक्तिवाणी। तो फर्स्ट सरेंडर टुक प्लेस इन रावला कोट। बाद में उन लोगों ने मिन्नतें करके लोगों को रिहा कराया, लेकिन बाद में उन लोगों को सजा दी कि आपने हमारे लोगों को सरेंडर क्यों कराया। सो दिस लॉन्ग हिस्ट्री। सो दिस टाइम दे हैव अटैक्ड अस, दे आर नॉट हियर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देने के लिए नहीं आए वो, दे आर हियर टू मीन उसको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए, मारने के लिए आए हैं। और अभी बात सुन ले, अभी अपने बातें कही हैं, यस इस वक्त रिपोर्ट्स नहीं है क्योंकि इंटरनेट नहीं है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ कन्फर्म्ड होती हैं, कुछ कन्फर्म नहीं होती। ठीक है, सिर्फ रावला कोर्ट में कहा जा रहा है कि 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं, और एक रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि 300 मारे जा चुके हैं, जैसे इसने कहा कि लाशें बिखरी हुई हैं, और एक ने ये भी कहा है कि 600 बंदे मारे जा चुके हैं और लाशें उठाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। मैं साथ ये भी कहूँगा कि दीज आर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, लेकिन एक बात ये भी है कि लोगों पर बहुत तशद्दुद हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भी। अच्छा एक बात और सुन लें, तत्ता पानी जो है हमारे एक जगह
1: जी,
0: वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर को कहा गया कि आप इन पर गोली चलाएं। इसने कहा जो आए थे पाकिस्तान से, ये हमें बचाने के लिए नहीं आए थे, बचा किस रहे थे, इंडिया ने हमला किया हुआ था, किसने हमला किया हुआ था, ये मारने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा जी आप गोली चला क्यों नहीं चलाते इन पर, तो सब इंस्पेक्टर ने कहा जनाब हम इसको नहीं मार सकते, आंसू गैस जिनमें फेंक सकते हैं, लाठी चार्ज कर सकते हैं, गोलियां नहीं मारते आपने लोगों पर। उसने कहा नहीं नहीं मैं हुक्म करता हूँ कोई आप गोली चलाएं। सब इंस्पेक्टर ने कहा जी ये आपका जो तरीकाकार है लोगों को गोलियां मारना,
1: हाँ
0: हम लोग अपने लोगों को गोली नहीं मारते। नतीजे के तौर पर उस आदमी को गोली मार दी गई, सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया। दिस इज सिक्योरिटी दे आर प्रोवाइडिंग, सो डोंट प्लीज यूज सिक्योरिटी फोर्सेज आर देयर।
1: लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं शब्बीर चौधरी साहब, क्या वहां पर पूरी तरीके से एक मिलिट्री गैरिसन बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के वीडियो वहां से आ रहे हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री का तशद्दुद वहां पर लोगों के साथ हो रहा है, जो शाहनवाज हो या उमर हो या बाकी सारे लोग अवामी कमेटी के लोग हैं, वो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? आगे की आपको क्या लगता है कि सरकार की और आर्मी की वहां पर मंशा क्या है?
0: बात देखिए, आर्मी की तो मंशा यही है, मुझे ये नज़र आता है कि ये जिस तरीके से इंडिया ने 2019 में इसको अपना हिस्सा बना दिया था, यूनियन टेरेटरी डिक्लेयर कर दिया था, तो इसका पार्ट टू जो है ना अभी आ रहा है। नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान वाले भी करेंगे इमरजेंसी, मोस्ट लाइकली जल्दी इमरजेंसी हो जाएगी इम्पोज कर देंगे, उसके बाद हो सकता है कि इसको यूनी फेडरल एरिया डिक्लेयर कर दें, ये नज़र आता है मुझे। ठीक है, जहाँ तक लोगों का तलक है, यानी ये जो लीडरशिप है दे आर इन सेफ प्लेस, सिवाय एक दो के जो पकड़े गए हैं। ठीक है, मैं ये आपको ये भी बता दूँ कि पलंदरी में कुछ लोग हमारे पकड़े गए थे, और जब वो उनको लेकर जा रहे थे तो पलंदरी के लोगों ने घेरा डाला और उनको ये कहा कि ये जो उनके थे 15-20 लोग थे जो पकड़ कर लेकर जा रहे थे विद देयर गन्स, हैं उन्होंने कहा कि सरेंडर अदरवाइज विल किल यू। तो अगेन जो उधर से फोर्सेज आई थी दे सरेंडर्ड, दे हैव अ हैबिट ऑफ सरेंडरिंग, है ना, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने फिर उन लोगों को छुड़ाया, अपने लोगों को छुड़ाया और उन लोगों को कैद कर लिया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि ये टेररिस्ट हैं, इन्होंने हमारे लोगों को यरमाल बना लिया और उनको क्या कहते हैं अबडक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया हमारे लोगों को। तो ये बातें चल रही हैं और हर जगह पर मारदाट जारी है।
1: लेकिन मुझे एक बात एक चीज़ इस पर जाहिर तौर पर सामने आ रही है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, अपने आप को शहनशाह बना दिया वहाँ पर, वो आसिम मुनीर पीस की बात करते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान, कहते हैं हम मीडिएट करेंगे, हम पीस लाएंगे, लेकिन वही आसिम मुनीर, वही पाकिस्तान आर्मी, वही ISI लोगों को मार रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरीके से। वहाँ पर हर जगह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं गोलियाँ चलने के, और वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स भी हैं पाकिस्तान आर्मी की, जो यूनिफॉर्म है उनके, जो जूते हैं, ड्रेस हैं, उनको जो है प्रोटेस्टर्स लकड़ी पे घुमा रहे हैं हर जगह, तो कैसा आक्रोश है और ओवरऑल जो हिपोक्रेसी है क्या वो सामने नहीं आ रही पाकिस्तान आर्मी की?
0: देखिए जी, अब एक बात मैं आपको वेरी क्लियरली कह दूँ कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो 30 years पहले कहना शुरू किया था कि पाकिस्तान हमारे साथ यह गलत कर रहा है। ठीक है, उसको मुझे भी कहा गया था जी इंडिया का एजेंट है, ये गद्दार है, एंटी जहाद है, एंटी पाकिस्तान है, सो एंड सो फोर्थ है। अब तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग कहते हैं कि आप लोग ठीक कहते हैं, हम लोग ठीक कहते थे, पाकिस्तान का असल चेहरा हमें नज़र आ गया है। और ये जो है ना बेसिकली उन्होंने कहा कि ये हमें तो नज़र आता है कि इतना गाजा में नहीं हुआ जो हमारे साथ हो रहा है, एक आदमी ने ये कहा है। ठीक है, देखिए बात यह है कि ये पीस किसी और जगह कराना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पीस करा सकेंगे नहीं करा सकेंगे, लेकिन जिसके घर में आग लगी हो अपने घर में, तो वो मतलब फ़र्ज़ किया कि

0: इंडिया में कोई गड़बड़ हो रही है तो वो अमर वहाँ यह करने के लिए जाएगा जब बलूचिस्तान में आग लगी हो, के में आग लगी हो, के बलूचिस्तान जो उनके हाथ में नहीं है, पीटीआई उनके हाथ में नहीं है, जो जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता था, हम तो उसको पीओके कहते हैं, पीओके उनके उनके हाथ में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान को पर वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो वो क्या जाकर आपके बिहार में या बंगाल में जाकर अमर प्रमोट करेंगे? आंसर इज नो, दे डोंट बिलीव इन दैट। अमर जो है ना उनको सूट नहीं करता, ये याद रखें, अमर जो है ना पाकिस्तानी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग वॉर्स, ये वो दे नो हाउ टू सबड्यू पीपल, लेकिन अमर जो है ना उनको सूट नहीं करता, किसी न किसी बहाने देखिए किसी न किसी जगह कोई ना कोई गड़बड़ रहती है पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान। आखिर क्यों वो उनके अपने लोग हैं, उनको क्यों गोलियां मार रही हैं, वजह बताए ना। मैं कल भी मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं पाकिस्तानी के इंटरव्यू करने वाला, मैंने कहा ऑल वी आर आस्किंग इज राइट टू लाइफ, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे फ्लो फ्लो फ्रॉम दिस राइट, राइट टू लाइफ जो होता है ये ज़रूरी है, फंडामेंटल है, तो हमें हम कहते हैं कि हमें ज़िंदा रहने का हक दें, हमें इंसान समझें, चलो जी आप हमें अपने बराबर नहीं समझते लेकिन इंसान तो समझें ना, हमारे हकूक दें, और फिर यह है कि हमें आपने आपको लूट मार करने का शौक है, लूट मार करें, लेकिन जो
1: जी
0: हमारे ये कुछ मतलब बिजली की मदद में देख लें, वो कह रहे थे जी हम आपको खिलाते हैं, मैंने कहा नो नो नो, हम आपको खिलाते हैं, इन्हें आप हमारा खाते हैं,
1: जी
0: मैंने कहा कि बिजली के माध्यम में, सिर्फ बिजली के माध्यम में, हाइड्रो पावर में के माध्यम में पाकिस्तान एनुअली एक साल में 1.3 बिलियन न सॉरी ट्रिलियन हमारा लेकर जाता है, कोई आदमी चाहे तो हिसाब करके देख ले। मैं कहता हूँ कि हमारी ये जरूरत है 3 मेगावाट है, 350 मेगावाट है, 350 मेगावाट हमारे वाले कने तक हमें बिजली मिले, हमें बिजली भी नहीं मिलती सही तरीके से, ठीक है, प्रोड्यूस हम करते हैं 3500 मेगावाट, हम कहते हैं कि 350 हमें दे दें, बाकी अगर आपको लूटने का शौक है लूट कर ले जाएं, चोरी कर लें,
1: नहीं, बिल्कुल
0: या तो
1: आपके
0: अच्छी
1: जो
0: बात है अगर
1: सवाल
0: हमें
1: हैं
0: आप
1: बहुत ही लेजिटिमेट सवाल हैं, चाहे वो बिजली का हो, नेचुरल रिसोर्सेज का हो, नौकरियों का हो, चाहे वो पॉलिटिकल या फंडामेंटल राइट्स का हो या फिर राशन का हो, ये सब जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट मिलता है जो पीओके के लोग हैं वहाँ पर। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से चुप क्यों? आप देख रहे हैं जितने भी वहाँ पर टेलीविजन चैनल हैं या अखबारात हैं, कोई भी इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरीके से चुप है। क्या पाकिस्तान आर्मी ने पूरी तरीके से एक जो है बैन लगा दिया है वहाँ पर, मीडिया ट्रैवल नहीं कर सकती, या फिर मीडिया को एक संदेश दिया गया है कि आप कवर ना करें?
0: यार, ये आपको थोड़ी सी चिरानगी भी हो रही है, अभी आप कहते हैं मीडिया चुप है, वो हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है, झूठ को चुप नहीं है, गलत में कर रहा है, वो कह रहे हैं जी ये इंडिया के एजेंट हैं, शौकत नवाज मीर का वो भी इंडिया का एजेंट है, हमारे पास सबूत आ गए हैं, कहाँ सबूत हैं? यानी मीडिया की यह हालत है कि जब बलूचिस्तान के लोग आए थे 1000 किलोमीटर पैदल चल कर आए थे सर्दियों में, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, तो मीडिया उनके करीब से गुजर जाता था लेकिन फोटो नहीं बनाता था, उनके इंटरव्यू नहीं लेता था, ये मीडिया की हालत है, उनको ये अपने घर में आग लगी है उसकी परवाह नहीं है, उनको फिक्र ईरान की है, गाजा की है, किसी और जगह की है, यानी मीडिया इज अंडर द कंट्रोल, कोई आदमी बात नहीं करेगा, मेरे लोगों से बातें होती रहती है ना, यानी मेरे भी हमदर्द हैं, मैं आपको ये बताऊं कि विद इन पाकिस्तान मेरे बहुत से हमदर्द हैं जो जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते, माजी में भी पहुँचाते हैं, अब भी पहुँचाते हैं, दे नो कि मैं एक सिंसियर आदमी हूँ, वो खुलकर बात करता हूँ, डरता नहीं हूँ, खौफजदा नहीं हूँ, चाहे मेरी मौत आनी है आ जाएगी, वो
1: जी
0: किसने मुझे मारना मुझे पता नहीं है, लेकिन आई विल नॉट बी इंटिमिडेटेड, आई विल फाइट माई कॉर्नर, मेरी जमात भी फाइट करेगी, वी बिलीव इन पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल स्ट्रगल,
1: ऑल
0: हमारी
1: राइट,
0: स्ट्रगल जो है ना हम बंदूक के इस्तेमाल को गलत कहते हैं, जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ हिंदुस्तानी कश्मीर में हुआ है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, अभी भी कोई गड़बड़ हो रही है हम उसकी मजम्मत करते हैं,
1: ऑल राइट, शबीर चौधरी जी,
0: बंदूक
1: थैंक
0: इज
1: यू
0: विल
1: वेरी मच
0: नॉट
1: फॉर
0: वे
1: ज्वाइनिंग इन, बट फॉर रिकॉर्ड व्हाट हैपेंड इन 2019 वाज अ पीसफुल ट्रांजिशन, इट वाज एन एब्रोगेशन ऑफ 370 अंडर द लॉ एंड द एंटायर कंट्री हैड स्पोकन इन यूनाइटेड फैशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी इज सब्जुगेटिंग इट्स पीपल इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीपल आर बीइंग किल्ड, देयर आर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड द ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम आसिम मुनीर, दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी दैट वी कंटिन्यू टू एक्सपोज हियर ऑन एनडीटीवी। देयर हैव बीन एक्यूजेशंस अगेंस्ट मी आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज द मॉकरी ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड द डीप स्टेट इन पाकिस्तान, बट वी कंटिन्यू टू एक्सपोज एंड रेज द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हु वॉन्ट टू रिटर्न टू इंडिया। And there's some breaking news coming at this hour. This is regarding Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay on Tuesday has inaugurated a special police unit, which is Singapin To provide enhanced safety to women, Vijay unveiled the insignia for the Special Force tasked to prevent crimes against women and children and to provide better safety to them. Tamil Nadu Chief Minister Vijay assured swift action, tough punishment for crimes against women, zero tolerance against crimes against

0: And breaking news coming in Uttar Pradesh, viewers. Devotees in Mathura, house shade collapse, mishap near Banke Bihari temple. And we are learning that four devotees have sustained injuries. More details are awaited, but this is the latest that we are picking up. This is a very important pilgrimage in Mathura. The mishap is near the Banke Bihari temple. In a house shade collapse, four people have been injured. This is a ground report that we are picking up. And let's listen.
1: के पास एक बने घर का छज्जा गिर गया, आप देख सकते हैं ये ऊपर जो छज्जा है अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। स्थिति आपको मैं दिखाऊं कि नीचे की, यहाँ पर छज्जे का मलबा पड़ा हुआ है और इसमें लगभग 4 से 5 श्रद्धालु यहाँ पर घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप इधर की स्थिति में आपको दिखाऊं तो पुलिसकर्मी यहां पर खड़े हैं जिन्हें, जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भिजवाया गया है और जो श्रद्धालु हैं उनको यहां पर रोक दिया गया, आवागमन एकदम बंद कर दिया गया। जब ये हादसा हुआ तो ये गली आप देख रहे हैं ये खचाखच भरी हुई थी और इधर की आज साइड में आपको दिखाऊँ कि मंदिर की ओर रास्ता जाता है और एक रास्ता अगर दिखाऊँ तो मैं इधर की साइड ये जाता है, खून यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। हादसा एक बड़ा है, भयानक है और ये जिस तरीके से हादसा हुआ, कैसे हुआ, बताया जा रहा है कि बंदर यहाँ पर लड़ रहे थे, अचानक वो यहाँ फिर कूद गए, कूदने के बाद जो छज्जा था वो गिर गया। हमारे साथ यहाँ पर बाकी बारी मंदिर की सेवायत है मयंक जी, कैसे हुआ ये हादसा?
2: देखिए, एक तो जर्जर इमारत है ये ऊपर, दूसरा इस गली से भक्तों का आवागमन लगा रहता है, इसी गेट से शनि बिहारी से पब्लिक आती है और कभी कभार तो ऐसी जाम की स्थिति हो जाती है यहाँ कि आधे आधे पौन पौन घंटे यहाँ भीड़ खड़ी रहती है। और जैसा कि आपको दिख रहा है जिस मकान ऊपर, एक्चुअल हुआ क्या है कि यहाँ ऊपर जब बंदरों के आपस में लड़ने की बदौलत इस पर करीब 10-15 बंदर इस पर छज्जे पर कूदे, जिससे कि ये यहाँ ऊपर से वो पूरा मलबा गिर गया। 4 श्रद्धालु यहाँ घायल हैं, एक की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, सिर में बड़ी बुरी तरह उन लोगों के चोट लगी है, बहुत परेशानी हुई है।
1: देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 से 5 श्रद्धालु घायल यहाँ पर हुए हैं और जिन्हें अस्पताल के लिए भेजा गया। मथुरा से सौरभ गौतम, NDTV इंडिया। बांके बिहारी
0: All right, viewers, that's all we had on Nationwide at 6. But the prime time continues here on NDTV. Keep watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: Mamata Banerjee now courting the Congress from strength, or because ground beneath her has completely shifted? And what is it that now Sonia Gandhi and the Congress party are looking at, a completely changed calculus? Is Abhishek Banerjee the air steadying the ship, or the lightning rod that has split it already? And the question nobody in this TMC really wants to ask out loud, which is what happens if the CID actually finds any grain of truth in what Rita Bratta and Sandeepan have alleged? Does a forgery probe stop being politics, becomes a legal landslide? The rebellion, the raid, the rendezvous in Delhi. Let's get started.
1: Mamata Banerjee is not in a picture. Neither any FIR has been lodged against Mamata Banerjee. Nor she has been called as a witness anywhere. This is a vindictive attitude initiated by Shubhendu Adhikari, Chief Minister. This is totally to harass.
2: हम लोग कंडेम कर रहे हैं, हम सब लॉ अबेडिंग सिटीजन है, लेकिन ये घर ममता बनर्जी का घर, 3 times का चीफ मिनिस्टर, 7 times का एमपी, ममता बनर्जी जैसी लीडर, उन वो ममता दीदी का जो अभी दिल्ली में प्रोग्राम है, ये तो सबका मालूम है, दिल्ली में प्रोग्राम है, ये इंडिया ब्लॉक का मीटिंग है, दूसरा इम्पोर्टेंट मीटिंग है. तो ममता बनर्जी जब नहीं है उनके एब्सेंस में ये क्या हो रहा है? मेरा तो एक काम था, मैं जब आया ये सब देखा हूं तो अंदर से हमको बुलाया, लेकिन सीआईडी नहीं अलाउ कर रहा है. लेकिन इतना दिन तक ममता बनर्जी थे तो वो लोग नहीं आया.
3: इट ओनली शोज दैट नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड. ममता बनर्जी एंड आवर एक्स चीफ मिनिस्टर थॉट एंड टॉलरेटेड क्रिमिनलिज्म, करप्शन, what not, last 15 years. She never cared for the constitution. She thought West Bengal is another country and she is the prime minister of that country. So today CID is at her place. Everybody will be brought to books and be, you know, public will be given justice.
1: Tera saath ED hai, tera saath CBI hai, tera saath pura भारतवर्ष का पावर है और मेरा साथ मामाटी मानुष है.
4: हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मामाटी मानुष के नाम पर. इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था. और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया. उसका आरोप लगा सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया.
5: 60 से अधिक विधायक भी आज तृणमूल कांग्रेस को असली तृणमूल कांग्रेस बोलकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूर हट रहे हैं. और अब सांसदों ने भी ये निर्णय लिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस जो अभिषेक बनर्जी वाली है उसके साथ नहीं चल सकते. अब किसी को डिनायल मोड में रहना है, डिल्यूजनल मोड में रहना है तो उसका कोई इलाज नहीं है.
6: तो क्या कहेंगे, देश के लिए काम करना तो कोई अन्याय नहीं है. तो इतना दिन तक टीएमसी में रहते हुए देश के लिए काम करने का मौका शायद उन्हें नहीं मिली होगी. वो सारे याद आ गए चुनाव हारने के बाद. तो मैं ये अपना अपना मर्जी है, हम चुनाव लड़ते हैं, हम नुमाइंदे बनते हैं, हमें कुछ फर्ज निभाना पड़ते हैं, तो ये भगोड़े वाले ऐसा ही करेंगे.
0: All right, let's open this up. We've got Sanju Verma representing the BJP. Congress is being represented by Bhavya Narasimha Murthy with us on the broadcast. Tushar Gupta, political analyst. Rashid Kidwai, senior journalist. And we're also being represented by Manav Jaiswal, who represents the TMC here. Thank you so much, all of you, for joining me on this edition of The Buck Stops Here. Rashid Kidwai, let me start with you, because I think the most important set of optics that's been playing out the last 24 hours has been the Mamata Banerjee, Sonia Gandhi meetings and Bonhomi and sitting next to each other. All of that playing out even as there's an CID probe and raid, all of that happening in Bengal. You know, Mamata built the TMC by walking out of the Congress. You've tracked the Congress so closely. And, you know, this has pretty much been the defining aspect of her politics, isn't it? The last 20 years and 28 years, actually. What does this tell you right now about Mamata being

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
2: फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल एक्सेस, फ्रॉम रिफॉर्म टू रियल इंपैक्ट, बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल डिफाइन द नेक्स्ट इंडिया। एनडीटीवी इग्नाइट द फ्यूचर इंडिया समिट, a closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
4: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
2: फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल एक्सेस, फ्रॉम रिफॉर्म टू रियल इंपैक्ट, बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल डिफाइन द नेक्स्ट इंडिया। NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect. I dig. Until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
4: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
3: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV Network.

0: या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास।
1: On that note, we're slipping into a very short break. Don't go anywhere. Keep watching NDTV.

0: And what did you say to her, sir, as one of her
1: soldiers?
0: I just
1: told her that I'll be there. I said, I'll be there. I'm not a traitor. I believe in when the going gets tough, the tough gets going. And Didi, I'm with you. I shall stay with you. This is the time which shows a man's character, a person's character. You have many friends during good days. During bad days, you have none. And I'm a friend of bad days. And you can ask all those friends who know me.
0: Okay. I'm going to leave it there. Kirti Azad, as always, good to have you here on NDTV. Thank you for speaking to me.
1: Thank you, Shiv. Thank you very much.
2: Now, in a shocking turn of events, the nomination paper of Congress candidate Meenakshi Natarajan for the Rajya Sabha election in Madhya Pradesh has been rejected. High drama erupted outside Election Commission office in Delhi. Jairam Ramesh reached the Election Commission office and had a heated argument with CISF personnel who told him they had no prior information about the visit and that all the officers had left for the day. But KC Venugopal also reached the EC office. Delhi police personnel were subsequently called to the spot after CISF personnel refused to allow all the leaders inside. The Congress leaders staged a dharna outside the main gate. Natarajan is accused of allegedly concealing information regarding a pending criminal case in a Hyderabad court. While the BJP has announced three candidates, Meenakshi Natarajan was considered likely to win. Sample the reactions.
3: एक लीगल नोटिस की आड़ में जो कि अभी जिसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था जो संज्ञान में भी नहीं आया गया था उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी हमारे दोनों वकील साथियों ने सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे और जैसा उन्होंने कहा उन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से हियरिंग तक नहीं दी गई उसका उल्लेख भी नहीं हुआ और एक फैसला आया इसके बाद
4: महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली राजनीतिक बातें बहुत सारी है पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी एक कदम पीछे नहीं हटेगी
5: कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए
6: जी
5: कहाँ से आए हमारे
6: तेलंगाना से
5: कहाँ से आए भाई और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है तेलंगाना में सरकार इनकी है सरकार इनकी है तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं तो कांग्रेस की ये स्थिति है ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास मोदी जी के काम पर विश्वास
2: On that note, we are slipping into a very short break. Don't go anywhere. Keep watching NDTV.
7: Across the country. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. India is rewiring. The way it builds, the way it connects.
8: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है
7: फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल एक्सेस फ्रॉम रिफॉर्म टू रियल इंपैक्ट बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल डिफाइन द नेक्स्ट इंडिया एनडीटीवी इग्नाइट द फ्यूचर इंडिया समिट A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
9: What seems

0: राजनीतिक बातें बहुत सारी हैं, पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी।
1: कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे?
2: तेलंगाना से।
1: कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी। हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास।
3: On that note, we are slipping into a very short break. Don't go anywhere. Keep watching NDTV.